पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

काम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: भक्ति के सुरों में डूबते रहिए, मैं फिर हाजिर होंगी एक छोटे से अंतराल के बाद। यह है गीतांजलि, लोटस एफएम के अंतरतरंग द्वारा आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हम।
1: Get ready to dominate the table. Every shot counts. Every score thrills. Are you ready to play all the way? Bounce to victory with an

Welcome back, dear listeners. You're tuned into Gitanjali, bringing you melodies that linger and words that resonate, Hindi words that resonate. आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा हिंदी कार्यक्रम गीतांजलि और मैं हूं आपकी अर्चना श्रीधर. So welcome back to the timeless melodies that we play here, the magic of music and the joy, of course, of Hindi, the Hindi भाषा, Hindi language. आज का शो रहेगा थोड़ा खास, थोड़ा जश्न भरा, क्योंकि हम मना रहे हैं एक शानदार अभिनेता और दिलों के हीरो आर माधवन का जन्मदिन. जी हाँ, आज हम आपके लिए उनके थोड़े गीत लेकर के आएंगे और उनके चार्म और सिंप्लिसिटी के बारे में तो आप जानते ही हैं. शानदार एक्टिंग की तरह ही दिल को छू लेने वाले एक्टिंग कर लेते हैं वो. आज का हमारा मुहावरा जो है, श्रोताओं ध्यान दें, आज का मुहावरा है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे. अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यही है आज का मुहावरा. और श्रोताओं, मुझे इंतजार रहेगा आपके इस मुहावरे के उत्तर के लिए. ठीक है, तो आप भेजिए इन उत्तरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर द्वारा 0716137803. ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर. एक बार फिर मुहावरा दोहरा रही हूँ आपके लिए, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे. अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे. सो स्टे ट्यून्ड, कीप स्माइलिंग एंड ऑफ कोर्स गेट रेडी टू सेलिब्रेट दिस ब्यूटिफुल लैंग्वेज कॉल्ड हिंदी इन दिस प्रोग्राम गीतांजलि, ब्रॉट यू बाय द एयरवेव्स ऑफ लोटस FM. अब हम सुनेंगे सुनिधि और के आवाज में घूमर. ये भी एक शानदार गाना है.

0: Welcome back once again. This is Geeta Anjali, the Hindi language program on Lotus FM. People asking me what the idiom is for today. So let me repeat the idiom. The idiom goes like this. Andha baate revdi, fir fir apne ko de. Once again, right? Andha baate revdi, fir fir apne ko de. Day. This is the Muhavra. Well, it's time now for the Hindi Vakyansh, Hindi lesson. So let's get straight into it.
1: You are listening to Geetanjali, Mondays 6 to 7 p.m. Lotus FM.
0: Today's Hindi Vakyansh goes like this. Khilte phool ki tarah khile, dunya ki parwah kiye bina, apni khushbu bikhre. Khilte phool ki tarah khile, दुनिया की परवाह किए बिना अपनी खुशबू बिखेरे. श्रोताओं जरा सोचिए, खिलते फूल की तरह खिले. सो ब्लूम लाइक अ फ्लावर विदाउट वरिंग अबाउट द वर्ल्ड. इस पंक्ति में जीवन का बहुत सुंदर संदेश छिपा हुआ है कि हमें दूसरों की राय या आलोचना जो होता है, या बता सकते हैं कि उनकी सोच जो होती है, इससे डरकर नहीं जीना चाहिए. So this phrase carries a very powerful message, you know, that we shouldn't live in the fear of others' opinions or judgments. जैसे एक फूल छुप-छुपा सा खिल जाता है, ना कोई तुलना, ना कोई देखने वाला, या ना किसी को दिखाई बिना खिल जाती है. तो वह किसी से पूछता ही नहीं है कि क्या मैं अच्छी हूँ या क्या मैं अच्छा हूँ. वह बस अपनी खुशबू दुनिया में फैला देता है. सो जस्ट लाइक यू नो, इट डजंट आस्क एनीवन एज टू वेदर यू नो, डू यू वांट मी टू ब्लूम, एम आई गुड इनफ, और वेयर डू यू वांट मी टू ब्लूम, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. यह हमें सिखाता है कि हमें अपने गुणों पर ध्यान देना चाहिए और अपने व्यक्तित्व की खुशबू से दुनिया को बेहतर बनाना चाहिए. यू नो, यू कैन मेक द वर्ल्ड बेटर थ्रू योर ओन यूनिक प्रेजेंस. इन एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट इज यूनिक. सो यू कैन फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड यू कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन. तो श्रोताओं, आज का संदेश यही है कि अपने जीवन में फूल की तरह खिलिए बिना किसी डर के. वेल देन द मैसेज इज वेरी वेरी सिंपल. ब्लूम विदाउट फियर. और अपनी खुशबू यानी अपनी अच्छाई, अपने शब्द और अपने कर्म दुनिया में बिखेरते ही रहिए. कीप स्प्रेडिंग योर फ्रेग्रेंस, योर गुडनेस, योर वर्ड्स, योर एक्शंस इन टू द वर्ल्ड टू मेक इट अ बेटर प्लेस. यही है जिंदगी जीने का सबसे खूबसूरत tarika. Well, that was the Hindi Vakyansh for today. I hope you enjoyed it as much as a flower that blossoms and gives out fragrance. Stay tuned. I'll be right back. Is chote se antaral ke baad.
2: Johannesburg, the record-breaking show, a musical fusion with Beru and Bala, is now heading for Gold Reef City's Lyric Theatre on Saturday, 20th June. Catch the kings of sit-down comedy and Durban's leading orchestra, the Bollywood Show Band, for an evening of foot-tapping music and side-splitting comedy. Tickets from 150 Rand, selling from Ticket Pro. A musical fusion with Beru and Bala, Gold Reef City, 20th June.

Remembering KK as well, they what an iconic song, Sach Keh Raha Hai Diwana. I hope you enjoyed it on the airwaves of Lotus FM. Stay tuned. This is Geetanjali. वेलकम बैक दोस्तों, गीतांजलि के इस मधुर कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का आदर से मैं स्वागत करती हूं। आपका अपना ही पसंदीदा कार्यक्रम है हिंदी कार्यक्रम गीतांजलि। तो आज हम मना रहे हैं आर माधवन का जन्मदिन। उनका जन्म हुआ था 1 जून 1970 के दिन पे और उन्होंने अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है। उनका पूरा नाम है रंगनाथन माधवन, लेकिन उन्हें प्यार से मैडी कह के हम सब बुलाते हैं। आप तो जानते होंगे, फैंस यू नो फॉन्डली कॉल हिम मैडी, स्पेशली आफ्टर हिज आइकॉनिक रोमांटिक रोल्स। माधवन ने अपनी पढ़ाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की थी और एक समय उनका सपना था कि वो भारतीय सेना में भी शामिल होना चाहते थे। फिल्मों में आने से पहले वो पब्लिक स्पीकिंग और जो हम बोलते हैं यू नो कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें बहुत सारी एजुकेशन ली थी, उन्होंने पढ़ाई की थी। और आप सभी जानते ही हैं कि उनके बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं, फिल्म्स हैं जो बहुत ही आइकॉनिक बन गए हैं बॉलीवुड में। तो फिल्मों में उन्हें अपनी ही एक पहचान बनाने के लिए उन्होंने शुरू की टीवी के जरिए, जहां उन्होंने कई लोकप्रिय धारावाहियों में काम किया था और उनकी असली पहचान बनी फिल्म देखते हैं, आपको पता हो या ना हो लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बनाई अले पायुते इस फिल्म से, जहां हम बोल सकते हैं कि वो एकदम से यू नो एक ओवरनाइट स्टार बन गए इस फिल्म के जरिए। हिंदी फिल्मों में उनकी बड़ी पहचान बनी रहना है तेरे दिल में से, और आपने एक गाना अभी सुना सच कह रहा है दीवाना केके की आवाज में, एंड दैट फिल्म रियली बिकेम अ कल्ट फेवरेट एंड इट इज स्टिल लव्ड बाय मेनी across the world, एंड those songs आर सो iconic एंड सो melodious। इसके बाद उन्होंने रंग दे बसंती, गुरु और थ्री इडियट्स जैसे फिल्मों में काम

किया एंड उनका अभिनय हमेशा दिल से जुड़ा होता है, इसलिए हर किरदार उनका यादगार बन जाता है। उन्होंने रोमांस के साथ साथ गंभीर और एक यू नो आलीशान रूप में उन्होंने एक्टिंग भी दिखाई है, और तनु विद्स मनु में उनका सादा और एक प्यारा सा जो एक किरदार है, आई थिंक लोगों को बहुत बहुत पसंद आया। द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस कैरेक्टर आई थिंक हैज मेड हिम इवन मोर लवेबल देन एनी अदर टाइम। विक्रम वेदा में उन्होंने एक खास रोल, एक पुलिस ऑफिसर का भूमिका निभाया था, और ही ऑल्सो इम्प्रेस्ड ऑडियंसेस विद अ लॉट ऑफ सीरियस एंड स्ट्रॉन्ग रोल्स इन क्राइम ड्रामास। अब बात करते हैं उनकी एक खास उपलब्धि की। उन्होंने रॉकेट्री यू नो द नंबी रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट का निदर्शन भी किया था, एंड दिस मार्क him as a debutant director and showed his depth as a storyteller. It proved that he's not just an actor but a complete filmmaker. Over the years Madhavan ne 70 se bhi zyada filmon mein kaam kiya hai aur har baar kuch naya dikhate hain hamare liye. Unki sadgi aur vinamrata unhe shayad is level tak leke aa gayi hai aur bhi khaas bana dete hain unko. Aur apart from his talent, his humble nature is truly truly admirable. Woh kai bhashaye bolte hain aur aap sabhi jante hain ki woh ek truly ek पैन इंडियन स्टार बन गए हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत और जुनून से हर सपना पूरा किया जा सकता है। तो श्रोताओं, आज के इस खास मौके पर हम उनके कुछ शानदार गीत आपके लिए लेके आए हैं। आपने सुना सच कह रहा है दीवाना, अब हम सुनेंगे एक और लोकप्रिय गीत और ये है All is well. तो गाते रहिए All is well, हमारे साथ जुड़ते रहिए गीतांजलि के इस मधुर कार्यक्रम में

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं अर्चना श्रीधर और आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम जिसका नाम है गीतांजलि. वेलकम बैक वंस अगेन, दिस इज गीतांजलि एंड यस ऑफ कोर्स यू ट्यून्ड इनटू द एयरवेव्स ऑफ लोटस एफएम. इट्स टाइम नाउ टू गेट इनटू द ईडियम फॉर टुडे एंड बिफोर we get into understanding the meaning of this idiom, I just want to let you know that there were a lot of tries that came through on WhatsApp, but these three people particularly, that was Pritha from Johannesburg, Dalat and Zakira. These three people really nailed it and they got it right. So yay, congratulations to all of you. We'll go through their answers. Namaste Archana Ben, this is Pritha from Johannesburg, South. She says the idiom means literally translating to a blind man distributing sweets only to repeatedly hand them down to his own people. Well, that is it. Wonderful. Fantastic there. Dalit says the idiom translates to a blind person distributing sweets but repeatedly giving them to their own family. So this could refer to the act of nepotism or favoritism. A person in power distributing jobs or favors to his or her own relatives. Well said, Dalit. Congratulations. You are right. Bingo there. And then thereafter, Zakra says to favor one's relatives at the exception of others. Also goes on to say favoritism or nepotism, ? Yes, Zakira, absolutely right. Ayla tried as well. But Ayla, yes, she got halfway there. Well tried. Congratulations to those that tried but didn't get the answer right. Well, that's what we do. We need to try. Keep on trying. And yes, let's get into the meaning of this idiom. अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे. तो इसका मतलब जानने के लिए आइए दोस्तों, इसका अर्थ, इसका जो शब्द है उनके हम अर्थ आपके लिए बताएंगे. इसका अर्थ है कि जो कोई भी व्यक्ति एक ही चीज को लेके वितरण करता है. अंधा का आर्थिक शब्द है कि जो कोई देख नहीं सकता है. यहाँ एक प्रतीक है, एक पक्षपात करने वाले व्यक्ति को इस मुहावरे में अंधा करके बुला रहे हैं. सो ब्लाइंड लिटरली मीन्स दैट समवन हु कैनॉट सी, बट इन दिस केस इट इज सिंबलाइजिंग अ पर्सन हु लैक्स फेयरनेस और हु इज इम्पार्शल यू नो इन जजमेंट. बांटना या बांटे, यहाँ इसका अर्थ है बांटना या वितरण करना, टू डिस्ट्रीब्यूट और गिव आउट समथिंग. रेवड़ी, रेवड़ी इज ए स्वीट, एक मिठाई है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है प्रॉब्ली लाभ, सुविधा, पुरस्कार. इस तौर से इस शब्द को हम यहाँ पे देख सकते हैं. सो हियर इट रिप्रेजेंट्स बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स, अपॉर्चुनिटीज और द रिसोर्सेज दैट आर बीइंग ड्रॉन बाय अदर पीपल. फिर अपने को दे. फिर मतलब अगेन. फिर मतलब अगेन एंड अगेन. ऑलराइट, सो फिर अपने को दे. सो यहाँ इसका अर्थ होता है कि बार बार अपने ही लोगों को देते रहना. टू गिव सच बेनिफिट्स टू वन्स ओन पीपल. तो यही था इस मुहावरे के वर्ड टू वर्ड मीनिंग, यानी शब्द शब्द शब्द टू शब्द का अर्थ यही होता है यहाँ पे. तो देखते हैं कि इसका एक पूरा एक भावार्थ क्या है. जब कोई व्यक्ति निष्पक्ष नहीं होता है तो वो अपने परिचितों को या अपने पसंदीदा लोगों को ही बार बार फायदे देता है. सो व्हेन वन पर्सन लैक्स फेयरनेस, दे रिपीटेडली गिव एडवांटेजेस ओनली टू देयर क्लोज एसोसिएट्स और यू कैन से क्लोज फेवरेट्स एज वेल. व्याकरण के तौर पे दोस्तों, यहाँ हम इस इडियम को या इस मुहावरे को लोकोक्ति की तरह भी देख सकते हैं. तो अंधा यहाँ पे एक कर्ता है यानी कि सब्जेक्ट, बांटना एक क्रिया है यानी कि इट्स द वर्ब, और रेवड़ी यहाँ पे एक कर्म बन जाता है जो एक ऑब्जेक्ट है. सो दिस पर्टिकुलर इडियम हैज ए सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट
verb and object. The meaning, of course, is figurative, not literal, but it expresses a general truth and is not limited to any specific tense. The idiom is used when there is favoritism or biased decision making. For example, company mein promotion keval manager ke kareebi logon ko mila. Andha baate revdi. Another example, sarkari yojna ka labh keval samarthakon ko mil raha hai. Yaha ya to andha baatna revdi hai. Government benefits are going only to supporters, and this indicates clear favoritism. So I can say that the key message, jo mukhya sandesh hai is idiom is muhavre mein yehi hai ki lokokti hame nishpakshita aur nyay ka mahatva sikhati hai. So you can only learn the importance of fairness and justice through knowing the meaning of this particular idiom. So apne logon ko bar bar labh dena aur nishpakshita na rakhna, yehi hota hai fairness or justice. Repeatedly favoring one's own people is definitely not fair. Hopefully this brought you the meaning more clearly, and to all those people that tried sending their answers through that got, you know, the answers right, congratulations to you, and to all those that tried, keep trying. This is Geetanjali. I'll be right back. Ek chote se antaral ke baad main hazir hoti hoon aap logon ke saath fir se is pyar bhara karyakram mein.

0: Goody-goody, Bakichuri, taking you back in time there on the airwaves of Lotus FM. This is Gitanjali, the Hindi language program. Stay tuned.
1: You are listening to Gitanjali, Mondays 6 to 7 p.m. Lotus FM.
0: स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी भाषा कार्यक्रम जिसका नाम है गीतांजलि. अभी हम सुनते हैं जसपाल सिंह की आवाज में सावन को आने दो.

कितना ही प्यार भरा गीत है सावन को आने दो जसपाल सिंह की आवाज में. दिस इज लोटस एफएम्स गीतांजलि. एंड बिफोर वी नो लाइक आई ऑलवेज से इट इज डेफिनेटली टाइम टू मूव ऑन. तो दोस्तों इसी मधुर सुरों की अंजलि के साथ हम विदा लेते हैं गीतांजलि से. अब जुड़े रहे टॉक एट सेवन के साथ जहां बातें होंगी दिल की और हालातों की और हर घंटे की ताजा खबरें आपके लिए लेके आएंगे. शोना रात गहराई तो साथ निभाएगा नाइट कैफे विद केशव दास के साथ. मैं आपसे विदा लेती हूं. मैं हूं आपकी अर्चना श्रीधर. मैं आपसे कल मिलूंगी हमारी तेलुगु भाषा कार्यक्रम में जिसका नाम है संगीत निलयमु. तो दोस्तों फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार और शुभ रात्रि. At 7, you'll hear Shona speaking, talking to you on the top of the hour with news while I leave you with the song Hey Shona in the voice of Sean and Sunidhi Chauhan.

0: 30 minutes of non-stop music.
1: A Lotus FM classic. A Lotus FM classic.
2: आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर वहां सबके सामने देने में संकोच हो रहा था।
3: ये मेरे लिए सबसे अमूल्य भेंट है क्योंकि तुमने मुझे दी। माफ कीजिए, तुम क्या है आपको?
2: अपने से छोटों को हमेशा तुम ही कहा जाता है, और फिर तुम में जो अपनापन है वो आप में नहीं।
3: आज मैंने तुमसे एक नई बात सीखी है पूनम। अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं है। जिससे भी अपनापन मिल जाए

0: अपनी आंखों से ना देखता तो कभी यकीन ना होता। यही कि आपको हंसना खेलना भी आता।
1: सपने जिद की, इसलिए खेलना पड़ा। कुछ देर के लिए सब कुछ भूल के इस पागलपन में।
0: पागलपन? खुशी तो मन की तरंग होती है, उसे कोई रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकता।
1: कमल बाबू, कविता से मन को बहलाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। जिस मन को दुर्भाग्य ने और समाज के बंधनों ने कुचल डाला हो, उसे झूठा दिलासा देने से क्या फायदा।
0: आप मन की शक्ति को नहीं जानती। जिस मन में सच्ची भावना हो, लगन हो, वो एक बंधन को तोड़ सकता है।
1: और जिसके मन में न कोई उमंग हो, न कोई तरंग हो, जिसका जीवन एक कटी पतंग की तरह हो। आप ही के कविता के शब्द हैं।
0: वो मेरी अधूरी कविता है।
1: पूरी होकर भी कटी पतंग का भाग्य नहीं बदल सकती। जो एक बार अपनी डोर से कट गई, उसे दुख के थपेड़े न जाने कहां से कहां ले जाए। उसकी ना तो कोई दिशा है, ना कोई मंजिल।
0: फूल जोड़े में लगाते लगाते थैंक यू दिया।
1: मैं तो यूं ही देख रही थी।
0: फूल दो ही जगह शोभा देता है, एक भगवान के चरणों में, दूसरा स्त्री के जूड़े में।
1: हर स्त्री के जूड़े में नहीं।
0: एक बात पूछूं पूनम?
1: पूछिए।
0: थोड़ी देर पहले तुम हंस खेल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे तुम्हारा बीता हुआ जीवन इस झरने की तरह है, उमंग भरा।
1: लेकिन आज,
0: आज इस झील की तरह है जो ऊपर से शांत है, लेकिन इसकी गहराइयों में न जाने कितने अरमान मचल रहे हैं। पूनम, दुनिया में झील की गहराइयां ही सब कुछ नहीं, और भी बहुत कुछ है। जैसे जैसे ये फूल जो मुस्कुराहट देते हैं
1: और मुरझा भी जाते हैं,
0: जैसे ये शाम जो मस्ती लुटाती है
1: और रात के अंधेरे में खो जाती है।
0: पूनम, अगर तुम चाहो तो इस रात के अंधेरे से निकलकर आकाश के उजाले को छू सकती हो।
1: इसके लिए मजबूत हाथों के सहारे की जरूरत होती है।
0: पवित्र प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है पूनम।